0: மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சார்த்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
0: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

0: Let the celebrations begin.
1: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।

0: விழிப்புணர்வு முயற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சார்த்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी, नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग NCERT का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा, इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ CIT NCERT की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमथा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। वॉट ए कोइंसिडेंस इट इज दैट आई रेड दिस पोएम इन माई चाइल्डहुड इन द टेक्स्ट बुक एंड गॉट इट लिसन टू इट इन अ म्यूजिकल फॉर्म। आई लाइक दिस पोएम एंड सॉन्ग वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना। जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना। जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट, यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है, यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इसराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था

बॉब मोरान, उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबरा कर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा। मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन यह हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए, उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी यूएसबी पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और यूएसबी कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में सीडी और डीवीडी के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक सीडी के जंजाल में ही उलझे होते। जी हां श्रोताओ, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने

0: पेन ड्राइव की खोज की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे, अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
1: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
5: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
6: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ

0: गर्मियों में मिलते हैं। बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है? आपने कौन कौन से आम खाए हैं उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है, और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
5: बिल्कुल
4: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की जय! वीर जोरावर की जय! जय जेरापुर, जय भारत!
7: जय जेरापुर, जय भारत!
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
8: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे, और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
8: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
9: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
4: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
9: जी।
4: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
9: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
4: बिल्कुल,
9: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
4: जी मंत्री जी।
9: जी महाराज।
3: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
6: होशियार, खबरदार, रियासत जेरापुर के

0: महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
1: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह खास
2: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
2: जी,
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
3: जी,
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
4: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
5: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
4: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
1: बिल्कुल।
4: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
4: लेकिन जरा होशियारी से।
7: जो हुकुम सरकार।

0: But how? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो.
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ. आओ सामने.
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी. फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से.
2: जी.
3: छोड़ो मुझे. हाथ मत लगाओ मुझे. मुझसे हाथ हटाओ. मैंने कहा छोड़ो मुझे. हटो यहाँ से.
0: शाबाश, शाबाश, सारल जंग. मैं खुश हुआ. तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा
4: हुजूर.
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है. एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है. लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है. लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था.
0: फौजियों, ले चलो इसको.
3: छोड़ो मुझे. छोड़ो मुझे.
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए. उनकी सैनिक तैयारी के

0: बारे में पूछा गया। उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए। तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
1: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
2: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
3: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
2: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
3: ये नामुमकिन है।
2: वाय,
3: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
2: तो तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
3: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
2: Actually, you are a fool.
0: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
1: काला पानी की सजा?
0: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
3: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: நேரிலே இதுவரை NCERT வழங்கிய விளம்பரதார நிகழ்ச்சி கேட்டோம்.

0: லாபம் முயற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சார்த்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। आज का प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और आज के हमारे संदेश टू सोल्जर्स के बहुत ही विशेष अतिथि हैं कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन, और हम उनका स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे इस खास शो में। कर्नल कंवर भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय निकाला और आज आप हमारे शो में शामिल हुए हैं। हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आप हमारा शो लाइव सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में, और आप हमें मैसेज करके कर्नल कंवर भारद्वाज से सवाल कर सकते हैं, कुछ बात करना चाहे तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और हमारे साथ आज के बहुत ही विशेष अतिथि जिन्होंने देश को देश की सेवा में दो पीढ़ियों से ज्यादा की सर्विस दी है डिफेंस सर्विसेज में, कमीशन किए गए कर्नल कंवर भारद्वाज इंडियन आर्मी में 11 जून 1967 को राजपुताना राइफल्स इन्फेंट्री में। 1971 वॉर वेटरन है कर्नल कंवर भारद्वाज। 1971 वॉर में उन्होंने कंपनी कमांडर के तौर पर लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और किस तरह से शुरुआत हुई वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बातचीत शुरू करते हैं हमारे आज के खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज से। सर, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हुई शुरुआत आपका, या परिवार में कोई बैकग्राउंड नहीं था, आर्मी से आप किस तरह से जुड़े, कैसे वो जज्बा आपके दिल में आया।
1: मैं अपने बारे में बताने से साथ ये मैं कहूँगा कि मैं एक बहुत ही जमींदार फैमिली का तीसरे नंबर का बेटा था
0: जी,
1: और मेरे पिताजी जो थे वो एक फार्मर थे, और उसमें

0: जो मैंने मैट्रिकुलेशन किया वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके
1: ओके
0: और आर्मी ज्वाइन की एज ए जॉन,
1: अच्छा
0: और टेक्निकल रेजिमेंट सिग्नल्स के अंदर
1: जी
0: मेरा एंट्री हुआ व्हेन मेरी उम्र केवल 17 साल 216 दिन की थी,
1: अच्छा
0: और उस समय हम सिग्नल्स के अंदर रिक्रूट भर्ती किए गए थे।
1: जी
0: और वहाँ भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग वगैरह खत्म किया, और उसके बाद में हम जालंधर पोस्टिंग हो गए एज ए जॉन।
1: अच्छा
0: ये फौज के बारे में मोटिवेशन इतना कुछ नहीं था, एक
1: जी
0: जमींदार फैमिली से
1: जी
0: होने के नाते कॉलेज से भागकर,
1: अच्छा
0: फर्स्ट ईयर कॉलेज से भागकर हम आर्मी के अंदर ज्वाइन किया,
1: जी
0: और अपना मोटिवेशन यही था कि हम आर्मी के अंदर
1: जी
0: किस प्रकार से नौकरी करें।
1: जी सर, आप एक जमींदार, एक किसान परिवार से आते हैं, आपके पिताजी किसान थे, तो आपका किस तरीके से वो परिवेश रहा, और अचानक फिर ऐसे आपके दिल में जो जज्बा आया फौज ज्वाइन करने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए, तो ये कहां से मोटिवेशन, जैसे आपने बताया कि हमने
0: ये
1: इस तरह
0: बहुत
1: शुरू
0: ही एक अजीब सी बात है कि
1: जी
0: ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नौकरी करूं,
1: अच्छा
0: बट जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ ही रहा था गवर्नमेंट स्कूल गढ़ी अथरू में,
1: जी
0: उस समय मेरा इंगेजमेंट हो गया,
1: अच्छा
0: और इंगेजमेंट से डर के शादी नहीं करें अभी,
1: अच्छा
0: कॉलेज से भाग करके और बगैर बताए पेरेंट्स को हमने आर्मी ज्वाइन कर ली।
1: अरे वाह
0: और आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब पता पड़ा हमारे पिताजी को कि
1: जी, तो
0: हम
1: बहुत
0: फौज
1: नाराज
0: में जा
1: होंगे
0: रहे हैं, तो पूरा परिवार बहुत नाराज था,
1: जी
0: और पिताजी ने आकर के काफी कुछ कोशिश की, क्योंकि जो मेरी वाइफ जो शिक्षा भारद्वाज
1: जी
0: जो अभी नहीं है,
1: जी
0: वो उनके ताऊ जी वहां पे हेड क्लर्क पोस्टेड थे
1: अच्छा
0: सोल्जर बोर्ड में, और गुड़गांव में जब मैं भर्ती हुआ
1: जी
0: तो मेरे फादर जो है वो उनके ताऊ जी के पास पहुंच गए और मेरी कंप्लेंट की कि भर्ती होके जा रहा है, इसकी शादी वगैरह अरेंज कर रहे थे तो इसको रोको। तो मैंने
1: अच्छा
0: बड़े रौब से बगैर ज्यादा कुछ बोलते हुए अपने
1: जी
0: फादर का बहुत रिस्पेक्ट करता था, और गर्दन
1: जी
0: नीचे करके और अपने जो वुड बी फादर इन लॉ को भी ये बोल दिया कि जी फौज में जाना मेरे को अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू गो एंड ज्वाइन द आर्मी ओनली।
1: जी तो
0: तो
1: आप
0: मैं
1: डिटरमिंड रहे, आप मजबूत रहे कि मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी ही है।
0: एक्चुअली ये था कि 10th करके अगर कॉलेज में आगे नहीं पढ़ना है,
1: जी
0: और जोश था कि आर्मी ज्वाइन करें, क्योंकि
1: जी
0: आर्मी उस टाइम पे नंबर वन प्रोफेशन होता था आज के जमाने को ना कहते हुए,
1: जी
0: एंड आई हैड द इंसिस्टिंग टू माई सेल्फ इन दैट फीलिंग कि
1: जी
0: इससे बढ़िया नौकरी कुछ नहीं हो सकती।
1: अच्छा सर, वो कौन सा साल था जब आपने ज्वाइन किया?
0: इट वॉज 1961
1: 61
0: या एंड आई वॉज पोस्टेड रादर फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर, और
1: अच्छा
0: वहां पे इतना ज्यादा तगड़ा हुआ, और
1: अच्छा
0: जो मेरे वुडी फादर इन लॉ थे उसने जाते समय वार्निंग दे दी थी कि अगर जा ही रहे हो बगैर हमारे बताए
1: मर्जी के
0: मोदी के
1: जी
0: तो वहां जाकर के फिर ये मत बोलना कि आप हमारा नाम कटवा
1: अच्छा
0: दो।
1: अच्छा अच्छा मतलब ऐसे नहीं कि आप पीछे हट जाएं
0: और जिस काम से मैं भागा था,
1: जी
0: जिससे शादी ना करने के डिले करने
1: जी
0: की शादी से भागा था, जब मैं रिक्रूट ही ट्रेनिंग कर रहा था
1: जी
0: तो मेरे को 10 दिन की छुट्टी बुला करके, और मेरी शादी भी हो गई
1: अच्छा
0: व्हेन शी वॉज 14 ईयर्स एंड आई वॉज 18 ईयर्स ओनली,
1: ओके
0: बिकॉज आई ज्वाइन द आर्मी व्हेन माई एज वॉज ओनली 17 ईयर 216 डेज।
1: अच्छा आप पूरे 18 के भी तब तक नहीं हुए थे,
0: जी
1: और आपने अपनी सर्विस जो है नेशन के लिए, आर्मी के लिए, फोर्स के लिए देना शुरू कर दिया था
0: जी
1: जी। तो सर शुरुआत किस तरह से हुई? आप इन्फेंट्री में रहे, राजपूताना राइफल्स में रहे, तो यही शुरुआत थी, इससे पहले भी आपने किसी और जगह भी काम किया आर्मी में?
0: एक्चुअली जब सिग्नल्स के अंदर हम
1: सिग्नल्स में
0: जवान थे तो
1: जी
0: वहां हमारी पोस्टिंग हुई ट्रेनिंग वगैरह खत्म करने के बाद में
1: अच्छा
0: जालंधर,
1: ठीक है
0: जालंधर अलेवन कोर सिग्नल रेजिमेंट, उसके अंदर पोस्टिंग हो गई।
1: जी
0: एंड व्हेन आई वाज देयर 1962 का चाइना के साथ वार
1: अच्छा
0: हुआ,
1: जी
0: सो
1: जी
0: दैट टाइम हम जवान थे,
1: अच्छा
0: तो पूरी रेजिमेंट के अंदर काफी
1: जी
0: तहलका मचा हो रहा था, और हम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जवान बन गए थे वहां पे। और 62 का ऑपरेशन के बाद में
1: जी
0: इमरजेंसी कमीशन स्टार्ट हुआ,
1: अच्छा
0: तो इमरजेंसी कमीशन के दौरान
1: जी
0: मेरे को स्पेशली एक अच्छा जवान सेलेक्ट करके
1: अच्छा
0: और कमांडिंग ऑफिसर के साथ में कुछ एक कैंडिडेट से जिनका
1: जी
0: इंटरव्यू कैंडिडेट करके, और कर्नल साहब को जो हमारे सीओ थे उस समय,
1: जी
0: उनको स्क्रीन आउट करना था कि कौन को हम आगे एसएसबी के लिए रिकमेंड करें।
1: अच्छा
0: सो वो बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट है विच यू वुड लाइक टू नो
1: जरूर सर, जरूर हमारे
0: कि
1: लिसनर्स
0: मेरे को

0: ये ड्यूटी दी गई कि सबको बारी बारी कमांडिंग ऑफिसर साहब के अंदर ऑफिस में भेजते रहिए और इनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके एंड डू दैट फॉर
1: जी.
0: सो सीओ साहब 1:30 बजे लंच ब्रेक के लिए घर चले गए और आप जाते समय बोल गए कि मैं 3 बजे वापस आऊंगा और 3 बजे के बाद में बाकी कैंडिडेट का हम इंटरव्यू करेंगे.
1: अच्छा.
0: 3 बजे वो सही डॉट 3 वापस आ गए तो फर्स्ट कैंडिडेट को हमने बोला कि आप अंदर जाइए. तो वो अंदर गए तो उन्होंने जाते ही अंदर जाते ही बोला गुड मॉर्निंग सर.
1: अच्छा.
0: तो सीओ आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द टाइम. 3:05 सर.
1: अच्छा.
0: तो वाई आर यू सी मी गुड मॉर्निंग सर. तो ही सेड के सर वी हैव बीन टोल्ड इन द सिविल इफ यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम यू मस्ट विस हिम गुड मॉर्निंग. बोलता इफ देयर इज एनी हार्म इफ यू विस मी गुड आफ्टरनून और गुड गुड इवनिंग. बट सर वी हैव बीन टोल्ड द सिविल लाइक दैट. ही पुट अप सन अदर क्वेश्चन टू हिम ऑल्सो. सो ही वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई इट प्रॉपरली. Then he called for me.
1: Ji.
0: I in turn saluted him and he put up all those questions to me and straightway jahi wo jaise sawal sare main phatafat jawab diya to colonel sahab ne mere ko to chair offer kar diya aur usko bola thank you.
1: Acha.
0: Carry on.
1: Aur aapko
0: and he insisted me or rather motivated me.
1: Ji.
0: You try for commission. Why don't you try for commission? I said sir I am not graduate. I am matriculate only. I am not fulfilling the condition to apply for the emergency
1: criteria.
0: And he told me that okay criteria nahi hai abhi to aap ACC ke apply kariye. You apply for army cadet college and I see that you get selected. And mind you after that I never looked back.
1: Achha.
0: There were 63 candidates from my regiment those who appeared for initial army cadet college.
1: Ji.
0: All the tests and all that I was the first one to get selected out of 3 candidates out of 63 jo ke SSB tak pahunche.
1: To ye motivation sir aapko
0: ye motivation that way I got motivated and after that I never looked back. I had very good career throughout my army cadet college then IMA and when I passed out from there you asked me like how you got into infantry that to Rajput rifle. So on that I just tell you ke wahan pe jo mere company commander the IMA ke andar wo Rajput rifle se major Sharma sahab the jo ke war veteran the aur VRC decorated the.
1: Acha.
0: So I was very outstanding. Mind you I must be proud of telling you also
1: ke
0: I have played volleyball national level
1: national
0: and basketball step down and I was good boxer and cross country runner of the top class in academy.
1: Volleyball, so, boxing or running?
0: Or running.
1: Kya baat
0: hai? And volleyball national level national is something very
1: volleyball.
0: So he was so impressed and he wanted me to go to his regiment only.
1: Achha.
0: And that's why where is my CO that time who got me selected for ACC.
1: Ji.
0: He wanted me that I should join signals. But Achha. I got into Rajput Rifles and I was mighty happy. To be with the Rajputana Rifles.
1: तो सर आपको ज्यादा मजा किसमें आया मतलब आपको लगता है कि राजपूताना राइफल्स ही आपके लिए जो है एक ड्रीम था.
0: देखिए ऐसा मैं बताएं कि आर्मी ज्वाइन करना एज ए मैटर ऑफ प्राइड एंड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर एज ए डबल मैटर ऑफ प्राइड एंड इफ यू गेट इन टू इन्फेंट्री नथिंग लाइक दैट.
1: अच्छा.
0: एंड अमोंग इन्फेंट्री Rajputana Rifles
1: top.
0: Is a top.
1: Achha.
0: And I was very proud of this that oh I got into Rajputana Rifles.
1: Kya baat hai sir.
0: You know my elder son is also from Rajputana Rifles.
1: Yes sir.
0: And
1: ji
0: that boy also because Rajputana Rifles is one of the very good regiment
1: ji
0: and he is the one.
1: जी क्या बात है सर. हम आगे सर आपसे बात करेंगे और हम 62 जैसे आपने बताया हम 71 की बात करेंगे क्योंकि आप वॉर वेटरन रहे 1971 वॉर के तो हम उस पर भी बात करेंगे और कुछ आपसे इंटरेस्टिंग कहानियां भी जानना चाहेंगे. तो आगे बढ़ेंगे हम और अपने लिसनर से बताना चाहेंगे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमारे आज के हमारे खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं और 1971 वॉर वेटरन हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं अपनी बात कर सकते हैं और हमें आप सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर. बने रहे हमारे साथ यह देश का नंबर 1 रेडियो आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ.

0: यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ. मेरा नाम है शाहिद और आज हमारे हैं खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन. सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे इस शो में.
1: वेलकम, थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया आज हमारे साथ. आप जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बता रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनोखी भी हैं और बहुत ही

0: खुशी देने वाली भी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने बचपन से ही किस तरीके से आपके मन में था कि आपको फौज में भर्ती होना है, और आपने किसी की परवाह नहीं की और आपने वो मकाम बनाया जो हर इंसान के लिए, सर मैं समझता हूँ कि आसान नहीं होता, जाहिर है बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, तो वही आपने अपनी लाइफ में वो किया, अपने करियर में आपने जो अचीवमेंट्स हासिल की, वो जो मकाम आपने बनाया, तो इसके बारे में आपके कुछ, सर कुछ शब्द मैं चाहूंगा कि आप कहना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं?
1: आई थिंक ऊपर वाले ने जो दिया है
0: जी
1: जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे भी बहुत अच्छा मिला है। और जो 71 वार के बारे में
0: जी बिल्कुल
1: मेरा
0: सर,
1: इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बड़ा यंग ऑफिसर था
0: उस
1: एंड आई
0: जमाने
1: वाज
0: में
1: मेजर
0: बिल्कुल
1: रैंक था मेरे पास में।
0: जी
1: आई वाज कमांडिंग वन ऑफ द कंपनी ऑफ 9th बटालियन राजपूत राइफल
0: जी
1: इन पुंछ सेक्टर।
0: पूंछ सेक्टर में
1: या
0: जी। तो सर 1971 वॉर वेटरन हैं आप, तो उसके सर हम उस वॉर के बारे में जानना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा रहे हैं, तो वो किस तरीके का सर दौर था, वो क्या हालात थे, और जब वो जंग थी तो उस पर आपका और जो जो नेशन उस वक्त जो देश में चल रहा था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: देखिए उस समय जो हालात थी
0: जी
1: वो मुक्ति वाहिनी वगैरह बहुत पहले से मूवमेंट शुरू हो चुके थे
0: जी
1: ईस्टर्न सेक्टर में, बट नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर पुंछ एरिया स्पेशली उस
0: जी
1: साइड के अंदर कोई ज्यादा इतनी चहल पहल नहीं थी, लड़ाई की
0: जी
1: तैयारियां नहीं थी। लेकिन लकली वी हैड ए जनरल ड्यू कमांडर मेजर जनरल कुंदन सिंह,
0: जी
1: ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम राजपूत राइफल्स एंड ही हैपन टू बी ए वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग जनरल हु रिटायर्ड एज MS लेफ्टिनेंट जनरल। ही
0: जी
1: वॉज द वन हु पुल्ड अप द कम्प्लीट डिविजन एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी और एनी वॉर टाइप थिंग एट
0: जी
1: दैट टाइम।
0: जी
1: सो ही वॉज द वन एंड आई वॉज विद द ब्रावो कंपनी कमांडर
0: अच्छा
1: इन पुंछ सेक्टर वेयर पुंछ इज अदर साइड ऑफ द पुंछ रिवर एंड
0: ठीक
1: वी
0: है,
1: वर द अदर साइड ऑफ द दिस साइड ऑफ द पुंछ रिवर
0: अच्छा
1: एंड
0: आप
1: अदर
0: उस
1: साइड
0: तरफ थे,
1: हम इस साइड में थे।
0: अच्छा
1: और पुंछ के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में
0: जी
1: पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट होता है
0: अच्छा
1: एंड आई वॉज फेसिंग द पाकिस्तानीज अपोजिट माई पोस्ट अक्रॉस द रिवर पुंछ
0: बिल्कुल,
1: रिवर
0: मतलब आमने सामने की,
1: आमने सामने थे
0: बिल्कुल
1: और उनके पास में वहां पे RCL गन लगी हुई थी
0: अच्छा
1: और
0: RCL,
1: MMG लगी हुई थी।
0: ओके
1: वो डायरेक्टली हमारे अंडर व्यू थी, दे कुड फायर एट अस एंड वी कुड फायर एट देम।
0: अच्छा बिल्कुल आमने सामने
1: आमने
0: आपकी गन्स लगी
1: सामने
0: हुई थी,
1: फ्रॉम दैट टॉप एंड आई हैड यू नो कंपनी वॉज डिप्लॉयड ऑन 3 पोस्ट
0: अच्छा
1: एंड आई वॉज ऑन द मिडिल पोस्ट। मिडिल पोस्ट जो पहाड़ी का था
0: जी
1: उससे हम पूरी कंपनी को अपना कंट्रोल करते थे
0: ठीक है
1: और सामने से फायर वगैरह आते थे। चार
0: अच्छा
1: तारीख दिसंबर 4th ऑफ दिसंबर
0: जी
1: फायरिंग स्टार्ट हो गया। तो
0: ठीक
1: फायरिंग
0: है
1: स्टार्ट होने के बाद में पूरी रात हम लगभग लड़ाई लड़ते रहे और जो
0: जी
1: ही फायरिंग स्टार्ट हुआ तो माई एक्शन वॉज कि मैंने पूरे जवानों से मिलकर उनको हौसला बढ़ाना है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली व्हेन द फायरिंग वॉज गोइंग ऑन आई नेवर
0: अच्छा
1: बॉदर्ड। फर्स्ट आई वेंट टू अदर पहाड़ी अदर जो कि
0: अच्छा
1: जमीर पिकेट थी
0: जी
1: ऑलमोस्ट अबाउट 1 किलोमीटर अदर साइड
0: अच्छा
1: ऑन द अपहिल ऑफ द माउंटेन
0: अच्छा
1: एंड आई मेट ऑल द पर्सनल एंड जवानों
0: आपके
1: का
0: आपके जवान जी
1: जवानों का हौसला
0: हौसला
1: बढ़ाते
0: बढ़ाने के
1: बढ़ाते
0: लिए जी
1: देन आई वेंट टू द अदर पिकेट एंड देन टू माई ओन पिकेट एंड कंप्लीट नाइट आई वॉज एक्टिव विद दैट मीटिंग
0: अच्छा,
1: द
0: ये
1: पीपल एंड
0: मूवमेंट
1: नेवर वॉज
0: आपकी पूरी रात रही
1: पूरी रात रही
0: जी,
1: एंड
0: आप
1: वेन
0: मोटिवेट
1: आई
0: करते रहे, हौसला बढ़ाते रहे,
1: यू नो वी हैव द कमांड पोस्ट
0: अच्छा
1: एंड कमांड पोस्ट इज सॉर्ट ऑफ ए वेरी वेरी सॉलिड बंकर फ्रॉम
0: बिल्कुल
1: वेयर यू कुड ऑब्जर्व एंड देन डायरेक्ट द फायरिंग एंड अदर थिंग ऑल्सो एंड कमांड योर कंपनी ऑल्सो।
0: बिल्कुल
1: सो फ्रॉम द कमांड पोस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग इट
0: जी
1: वॉज गोइंग टू बी डे लाइट आई गॉट आउट फ्रॉम माई कमांड पोस्ट एंड वॉज गोइंग फॉर पी प्लेस
0: जी
1: टॉयलेट
0: जी
1: एंड टॉयलेट वॉज यू नो ऑल टेम्परेरी
0: जी बिल्कुल
1: टिन से टिन के ना टार्मेक के टिन होते
0: जी
1: हैं ड्रम
0: जी
1: उसको
0: ठीक
1: कट
0: है,
1: करके एक पर बड़े से पत्थर के साथ में
0: उसको बनाया
1: वो
0: जाता है
1: बनाया गया था
0: ठीक है
1: टेम्परेरी टाइप।
0: जी
1: सो आई वॉज गोइंग टू दैट वन। सो बंकर टू बंकर और वी हैव द कम्युनिकेशन ट्रेंचेज।
0: अच्छा
1: कम्युनिकेशन ट्रेंचेज आर द यू नो सॉर्ट ऑफ से अबाउट 5.5 6 फीट डीप
0: अच्छा
1: थ्रू विच यू कैन
0: अच्छा
1: वॉक
0: उसके अच्छा उसके
1: उसके
0: बीच में से आपको गुजर के जाना होता है, अच्छा
1: चल के जाना होता है।
0: जी
1: सो व्हेन आई वॉज वॉकिंग टू टॉयलेट एंड देन क्लाइम अप एंड गेट आउट फ्रॉम दैट वन
0: जी
1: दैट टाइम देर वॉज ए साउंड ऑफ ए RC

0: fire.
1: अच्छा
0: When the RCL fire came, so my operator was with me.
1: जी
0: And he was coming out with me, कि मेजर साहब कहाँ जा रहे हैं.
1: जी
0: तो वो मेरे साथ जो ही निकला, उसने सुना कि अब फायर हो गया आरसीएल,
1: जी
0: और इसने मेरा हाथ पकड़ के और पीछे गिरा दिया.
1: अच्छा
0: और बोला अरे सब मरोगे. एंड इन द मीन टाइम द आरसीएल बम हिट दैट टॉयलेट वॉज, इट वॉज थ्रोन अप इन पीसेस एंड द बिग द रॉक ओवर देयर, इट वॉज ऑल ब्लोन अप एंड वी वर रियली इन डेंजर एंड इट वॉज ए गुड लक ऑफ माइन.
1: कुछ सेकेंड
0: थैंक
1: कहीं सिर्फ
0: यस
1: आपके मतलब वो जो
0: Actually,
1: सामना होने वाला था.
0: it would have been entirely different thing. I would have been pieces, not sitting in front of you today.
1: बिल्कुल.
0: So that was the one. Then what happened next day, early afternoon, we got a order that you have to move out
1: अच्छा.
0: to another battalion,
1: hmm.
0: That is Banwar sector.

0: अपने जो भी है, हमको ऑब्जेक्टिव मिला है, जो टास्क मिला है उसको पूरा करेंगे। अभी
1: जी
0: बताता हूँ आगे क्या क्या
1: जी
0: हुआ।
1: जी
0: तो बीएम साहब ने बोला, और एटी वाले, मैं उनको बोलता हूँ
1: जी
0: कि आप अपना कंपनी को लेके क्रॉस करिए
1: जी
0: और आप पहुंचिए जल्दी से। सो यू नो क्लाइम वॉज क्वाइट बिग। वेन द फायरिंग स्टॉप,
1: अच्छा
0: आई मूव माई कंपनी क्रॉस द झूला ब्रिज, देन स्टार्ट क्लाइंबिंग अप। सो क्लाइंबिंग अप ऑल दैट, तो दैट मल्होत्रा प्लाटून वॉज लीडिंग, एंड वेज वी कम इन सिंगल लाइन।
1: अच्छा
0: ट्रैक के ऊपर जैसे पहाड़ों के चढ़ते हैं,
1: जी
0: तो सिंगल लाइन पे जा रहे थे। एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड इट वॉज गोइंग टू बी अर्ली मॉर्निंग, बट
1: अच्छा,
0: बिफोर फर्स्ट लाइट आई वॉज टू
1: तो
0: रीच,
1: पूरी रात को आपको चढ़ाई चढ़नी थी
0: बिफोर फर्स्ट लाइट आई वॉज
1: जी।
0: टू डू द ऑपरेशन ऑल्सो। दैट वॉज माई टास्क,
1: यानी कि
0: बिकॉज इफ
1: आप
0: इट वॉज द
1: जी
0: डे लाइट देन आई वुड बी एबल टू डू द नीडफुल।
1: बिल्कुल, तो इतनी टफ
0: सो
1: क्लाइंबिंग के बाद आपको ऑपरेशन भी अपना शुरू करना
0: कंप्लीट
1: है।
0: करना था।
1: बिल्कुल
0: सो वेन वी आर नियरिंग दैट ऑब्जेक्टिव
1: जी
0: बिफोर, आई मीन द 405,
1: जी
0: द 405 वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ चेसिक, एंड द सीओ वॉज देयर,
1: अच्छा
0: एंड ऑल दीज पीपल, दोज हू हैव द टेल में, दो कंट्रोल करते हैं। तो मेरे को उनको जाके ब्रीफिंग लेना था, उनसे ब्रीफिंग लेने के बाद मेरे को ऑपरेशन करना था। सो
1: जी
0: टाइम वॉज रनिंग शॉर्ट। तो वैन आई फाउंड के आगे से वो बैठ गए सारे,
1: जी
0: तो मैंने जाके जवानों से पूछा क्या हुआ। मोल साहब, मल्होत्रा साहब आगे बैठ गए। आई कॉट आउट ऑफ मल्होत्रा फ्रॉम हिज नेक एंड आई टोल्ड हिम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाई यू स्टॉप्ड। बोले सर टायर्ड। मैं कहा यू गेट बैक, एंड आई वॉज द वन टू लीड द कंपनी रीच टू द 405
1: फाइव
0: एफ डी एल,
1: जी
0: एंड आई मेट द सीओ। सीओ ब्रीफ्ड मी। आई आई रिक्वेस्टेड सीओ के सर गिव मी टू स्कॉट, दोज हू कैन टेल मी के वेयर फ्रॉम वेयर द फायर इज कमिंग,
1: जी
0: सो दैट माई जवान्स कैन अटैक दैट वन एंड आई डोंट सफर कैजुअलिटीज।
1: जी
0: सो वेन ई टोल्ड मे दैट ओके, मेजर स्वाइन इज द कंपनी कमांडर एंड
1: जी
0: यू टेक टू टू जॉन फ्रॉम हिम, दे विल टेल यू के फ्रॉम वेयर द फायर इज कमिंग। सो वेन आई वेंट टू हिम, मेजर स्वाइन सेट नो आई एम ऑलरेडी अंडर द अटैक, आई विल नॉट
1: अच्छा
0: बी एबल टू गिव एनी थिंग। सो आई वॉक बैक टू कमांडिंग ऑफिसर
1: जी
0: ऑफ चेसिक एंड आई सेट सर योर कंपनी कमांडर इज नॉट गिविंग मी स्कॉट। देन ही सेट के द टास्क इज गिवन टू यू। मैं कहा वेल कर्नल सो एंड सो, यू आर टॉकिंग टू द कंपनी कमांडर ऑफ 9th बटालियन ब्रावो कंपनी, एंड आई विल सी दैट माई टास्क इज कंप्लीटेड बिफोर द फर्स्ट लाइट एंड आई एम गोइंग। सो
1: ठीक
0: हिज
1: है
0: एडजुटेंट केम रनिंग विद मी एंड
1: अच्छा
0: ही आस्क्ड दैट मेजर स्वाइन टू गिव मी स्कॉर्ट, एंड आई पुट अप एन अटैक सॉर्ट ऑफ थिंग आई शुड से,
1: जी
0: के वी हैड टू गो डाउन, वी
1: जी
0: हैड टू गो डाउन इन द व्हाट यू कॉल वैली
1: अच्छा
0: एंड क्लाइम अप अगेन, एंड देन देर वॉज अ ब्लैक रॉक। फ्रॉम देयर द एमएमजी एंड एलएमजी ऑफ पाकिस्तान जो देवर फायरिंग, देवर नंबर ऑफ म्यूल्स दोज वर किल्ड एंड वन ऑफ द कैजुअलिटी वॉज देयर, अदर पीपल वर ऑल्सो इंजॉयड इन दैट वैली।
1: जी
0: बट बिफोर द फर्स्ट लाइट आई वॉज
1: जी
0: एबल टू क्लाइंब अप, एंड दैट एनिमी लेफ्ट हिज दैट लोकेशन,
1: अच्छा, वो तब
0: लिविंग
1: तक वहां
0: सम
1: से
0: नेशन इन वन ऑफ
1: जी
0: द
1: पीछे हट चुके
0: एंड
1: थे वहां से
0: देर रेन अवे फ्रॉम देयर,
1: जी
0: एंड आई ज्वाइंट मेजर पंजाब एंड मेजर पड्डा ओवर देयर, एंड देयर वर 36 पाकिस्तानी दोज वर किल्ड बाई दैट कंपनी दैट नाइट इटसेल्फ। सो नेक्स्ट मॉर्निंग वी पिक्ड अप ऑल दोज डेड बॉडीज ऑफ देम। आई हैड ब्रेकफास्ट, हॉट ब्रेकफास्ट विद मेजर पंजाब एंड ऑल,
1: अच्छा
0: एंड देन नेक्स्ट टास्क वॉज गिवन टू मी टू गो टू हेल्प आउट अदर कंपनी, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग कंपनी कमांडर एंड आउटस्टैंडिंग कंपनी इन द कंप्लीट डिविजन विद
1: जी
0: माई यंग जोश एंड ऑल दैट, एंड आई हैड स्टूड फर्स्ट इन वन ऑफ द कंपटिशन विच वॉज कंडक्टेड एट द डिव लेवल एट द डिव हेडक्वार्टर राजौरी, एंड द डिव
1: अच्छा
0: कमांडर हिमसेल्फ हैज गिवन दिस प्रेज ऑफ माइन दैट ब्रेव कंपनी कमांडर मेजर के एस कंवर भारद्वाज इज वन
1: जी
0: ऑफ द आउटस्टैंडिंग ऑफिसर इन दिस व्हाट डू दैट कंपटीशन ट्रेनिंग वी हैड इन द डिव बेटर स्कूल।
1: जी
0: सो दैट वॉज द रेपुटेशन ऑफ दैट थिंग।
1: बिल्कुल सर,
0: सो
1: आपकी आपकी वो जोश और जज्बे से भरा हुआ वो जो मोमेंट रहा, उसमें आपने इतना बड़ा उसमें जो है कंट्रीब्यूशन दिया, रोल प्ले किया, तो वो वाकई यादगार है। और जैसे

0: आपने बताया कि वो आपकी यादों में जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए, और वो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में हमेशा के लिए वो जुड़ा हुआ
1: जो
0: है,
1: अभी
0: वो
1: आप बात कर रहे हैं, अभी वैसा जोश आ रहा है,
0: जोश आ रहा
1: अभी
0: है
1: भी मैं
0: बिल्कुल
1: उसी लड़ाई, उसी पहाड़ और
0: जी
1: उसी
0: जी
1: ब्लैक रॉक जिसको मैंने जाके कैप्चर किया था,
0: कैप्चर किया
1: और
0: बिल्कुल
1: वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सामने अभी से
0: बिल्कुल
1: मैं फिर से
0: सर,
1: जवान हो जाऊं।
0: आप उन यादों में पहुंच गए और मैं आपके साथ उन यादों के साथ ही वहां पर पहुंच गया आपकी बातों में, कि मुझे महसूस हो रहा था कि मैं वहीं आपके साथ पीछे पीछे चल रहा हूं आपकी बातों में और आपकी यादों में, जहां आप वॉर फ्रंट पर थे और आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे
1: सही, इट्स वेरी नाइस टू टॉक ऑन दैट लाइन।
0: जी। और सर इसके बाद भी हम आगे आपसे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि हम और भी चीजें आपसे जानें, जैसे आपने 1971 वॉर की आपने जो इंसिडेंट बताया, यादगार कुछ लम्हे आपने शेयर किया हमारे साथ। सर आर्मी सोल्जर्स ने सिर्फ वॉर फ्रंट पर ही नहीं, उसके अलावा अलग अलग स्ट्रीम्स में भी, स्पोर्ट्स में भी गोल्ड और अदर मेडल्स भी जीते हैं, तो आर्मी का कितना बड़ा रोल रहता है वो हर तरह से, जैसे कि आपने भी कहा आप नेशनल लेवल चैंपियन भी रहे वॉलीबॉल के, बॉक्सर भी आप रहे, आप एक बेहतरीन रनर भी थे, तो आर्मी इन सब चीजों में भी आगे रहती है हमेशा, वो वहां भी कीर्तिमान स्थापित करती है।
1: वेल, राइट फ्रॉम द डे वन
0: जी
1: फिजिकल साइड हैड बीन माई द बेस्ट,
0: जी
1: आई से माई स्ट्रेंथ एंड देन माई मोटिवेशन,
0: बिल्कुल,
1: माई एम
0: फिजिकल स्ट्रेंथ
1: एंड
0: एंड
1: डिटर्मिनेशन, ऑल दोज थिंग्स। टूडे
0: उस
1: आई कैन से अगेन दैट आई सेल्फ मेड मैन इज
0: जी
1: इन फ्रंट
0: बिल्कुल
1: ऑफ यू, ठीक
0: बिल्कुल
1: है, फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑफ ए फार्मर फैमिली एट माई ओन, विदाउट एनी सिफारिश और विदाउट एनी रिकमेंडेशन और ब्राइब और एनीथिंग,
0: बिल्कुल
1: आई
0: सर
1: वॉज द वन टू डू ऑल दिस थिंग
0: बिल्कुल, आपने
1: एंड
0: बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरुआत की और आपने जो अचीवमेंट हासिल करी वो आपकी अपनी अर्न की हुई है, अपनी मेहनत से आपने वो जो एक मकाम हासिल किया।
1: यू विल बी प्राउड टू टेल यू दैट मैंने जब बटालियन में
0: जी
1: कदम रखा
0: जी
1: तो अपने आप को बटालियन में किसी जवान से कम नहीं समझा, मेरे फिजिकल में इतना दम था
0: जी
1: कि जवान भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ऑफिसर की तो बात ही छोड़
0: क्या
1: दीजिए।
0: बात है सर
1: और मैंने जब बटालियन जामनगर आ गई तो उस समय मैंने बटालियन में बॉक्सिंग टीम रेज की, वॉलीबॉल टीम रेज की, और वो वॉलीबॉल नेशनल लेवल के प्लेयर बनाए, और जो बॉक्सर सेलेक्ट किए थे
0: जी
1: उसमें फर्स्ट टाइम 4 बॉक्सर कमांड लेवल तक बॉक्सिंग किया,
0: क्या बात
1: एंड माई माई क्रॉस कंट्री रनिंग और दे लॉट ऑफ अदर कंपटीशन, आई यूज टू कैरी इवन द हैवी लोड ऑफ आरसीएल,
0: अच्छा, आरसीएल सर बहुत भारी
1: और
0: वजन
1: उसको
0: होती
1: कैरी
0: है।
1: करना पड़ता है,
0: अच्छा
1: MMG कैरी करनी पड़ती है, 3 पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं,
0: अच्छा उसको फिर
1: तो उसको
0: कंबाइन करके,
1: लेकर
0: अच्छा
1: के हमको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो ऐसे लंबी दौड़ें लगानी पड़ती हैं। सो आई यूज टू बी लीडिंग अमंग द जवान ऑल्सो विद ऑल दोट,
0: सही
1: एंड
0: है, बहुत बड़ी बात है
1: माई CO एंड माई TYC एंड माई बटालियन यूज
0: जी।
1: टू कॉल मी रनिंग हॉर्स,
0: रनिंग हॉर्स,
1: रनिंग
0: क्या
1: हॉर्स।
0: बात है सर
1: सो दैट वॉज द
0: जी
1: एंड माइंड यू दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो मैरिड एंड फादर ऑफ वन डॉटर, देन
0: जी
1: देन सन वॉज ऑल्सो बॉर्न देयर ओनली
0: अच्छा
1: जामनगर,
0: क्या बात है सर,
1: एंड
0: कर्नल
1: आफ्टर दैट आई हैड गॉन टू द वॉर।
0: जी कर्नल कमर भारद्वाज की बात सुनकर के हम भी जोश से पूरी तरीके से भर गए हैं, और यहां पर मैं जरूर कर्नल कमर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं, 1971 वॉर वेटरन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं संदेश टू सोल्जर्स में, उनको सर मैं आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूं जो आपकी पसंद से मैंने निकाला था। ब्यूटीफुल ट्रैक, घर से निकलते ही आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर शाहिद के साथ। आप हमें संदेश टू सोल्जर्स में कर्नल कंवर भरद्वाज से आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107007 पर, और जो मैसेजेस सर आ चुके हैं मैं उनको आपको पढ़कर सुनाऊंगा इस गाने के बाद।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और आज के हमारे खास मेहमान आज के शो में कर्नल कमर भारद्वाज सेना मेडल से सम्मानित वॉर वेटरन हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम उनकी कहानी सुनकर के खुद भी जोश से अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हैं। सर यहां पर मैं आपसे जो भी अभी अब तक मैंने बात की आपके बारे में बात की लेकिन सर एक ऐसी एक शहीद की बात भी मैं यहां पर करना चाहूंगा जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया जान की आहुति दी और वो थे कैप्टन उमंग भारद्वाज आपके सुपुत्र जिनको उनके साथी प्यार से टाइगर बुलाया करते थे। तीन सक्सेसफुल ऑपरेशंस उन्होंने किए जिन तीन ऑपरेशंस में उन्होंने 15 ड्रेडेड टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके बाद चौथा ऑपरेशन था वो एम्बुश था 18 और 19 नवंबर 2002 की मिडिल नाइट में। उस दौरान सर 6 टेररिस्ट मार गिराए गए जिनमें से 2 को अकेले उमंग भारद्वाज ने ही मौत के घाट उतारा और सर उसी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बलिदान दिया शहीद हुए वो और उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। सर वो मोमेंट था एक प्राउड मोमेंट भी था लेकिन बहुत ही यंग एज थी उनकी जब उन्होंने शहादत पाई और टेररिस्ट का मुकाबला करते हुए उनको मार गिराया और अपनी भी जान की आहुति दी देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर कैसे याद करते हैं आप?
1: ओह माय गॉड कैसे याद करते हैं। जैसे उसका नाम था ना उमंग
0: जी
1: ही वाज ऑलवेज ए लाइव वायर आई टेल यू ये मेरे लाइफ का वो इतना चाहता बेटा था
0: जी।
1: ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड ही वाज माय बेस्ट गाइड ही वाज माय बेस्ट फादर एडवाइजर व्हाट सो यू कॉल बिकॉज इट हैपेंड सो कि वो बड़े भाई से 7 साल छोटा था।
0: अच्छा
1: जो उस समय मेजर थे और एनएसजी में इंस्ट्रक्टर थे मेजर राजेश भारद्वाज
0: जी
1: और सबसे बड़ी सिस्टर जो है उनकी वो डॉक्टर सविता है।
0: अच्छा
1: सो उमंग वाज फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम एंड वी नेवर वांटेड टू सेंड हिम टू आर्मी बट ही गॉट सिलेक्टेड इन रिटर्न एंड देन ही वाज टू गो फॉर एसएसबी दैट टाइम आल्सो माई सेल्फ और मेरी और उसकी मम्मी शिक्षा भारद्वाज ने काफी कोशिश की कि हम इसको नहीं भेजे बट उसने हमारे को पर्स्यू करके और उस लाइन पे ले आए कि नहीं मेरे को फौज में जाना है और मैं पहले जाता हूँ एस

0: में अभी हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देखते हैं कितना दम है हमारे अंदर। तो वहां एसएसपी में गया एंड ही गॉट सिलेक्टेड बिकॉज पहले तो बोला था मैं ठीक है 5 साल के लेगा, जब जाएंगे तो शॉर्ट सर्विस में चले जाएंगे, एंड ही गॉट इन मेरिट एंड ही गॉट रेगुलर
1: जी
0: टू ज्वाइन सीएसडी आईएमए ज्वाइन करके।
1: अच्छा,
0: तो कमांड डिफेंस सर्विस ज्वाइन क्लियर करके
1: जी,
0: और एसएसबी वगैरह क्लियर करके आईएमए से पास आउट हो गया। दैट टाइम आई ट्राई टू गेट हिम इन द एएससी और एओसी।
1: अच्छा,
0: सो दैट टाइम आई वेंट टू आर्मी हेडक्वार्टर, वन ऑफ द ऑफिसर ओवर देयर विद माई फ्रेंड, आई हैड गॉन टू हिम एंड आई सेड कि भाई बेटा पास हो रहा है, तो मेजर हुड्डा वॉज देयर।
1: जी
0: ही सेड कि सर उसको हम आर्मर्ड कोर तो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं दे पाएंगे, राजदेव दे देते हैं। आई टोल्ड हिम, मैं कह रहा वो मेरे पे एहसान नहीं कर रहे आप,
1: बिल्कुल
0: ठीक है। तो उसको मैं क्या, हमने राजीव नहीं चाहिए उसको, तो राजीव तो उसका बाप है, उसका भाई है, तो उसका पेरेंटल हक है, वो तो मिलेगा। बट वी वॉन्ट हिम टू गो टू नेवी व्हाट यू कॉल एएससी और एओसी बिकॉज दैट टाइम देर वॉज सम हिच इन माई माइंड एंड माई वाइफ माइंड कि इसको कहीं खतरा है, पता नहीं क्यों ऐसा ही
1: आपको
0: पहले ही लग रहा था।
1: लेकिन सर उस उमंग में आपका वाला ही वो जोश था, अपने पिताजी का वो जोश और जज्बा, इसीलिए उनके साथ ही उनको टाइगर कहकर पुकारते थे।
0: आई एम कमिंग टू दैट वन। तो उसको व्हेन ही पास्ड आउट एंड व्हेन ही केम टू नो कि ये मेरे को एसी मिली है
1: जी,
0: तो मैंने उसको वो फोन पे बड़ी मुश्किल से बातचीत किया एंड ही वाज क्राइंग ऑन फोन कि डैड मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया, व्हाई यू गॉट मी इन एसी। आई सेड बेटे आपको 3 साल मिलेंगे अटैचमेंट के लिए, उसमें आप हमारी राजरीफ मेरी पलटन के साथ या भैया की पलटन के साथ में आप अटैचमेंट पे आना, अगर आपको राजरीफ ही चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, अदरवाइज मैं क्या राजरीफ अगर मिल जाती है या इन्फेंट्री मिल जाती है उससे बाहर निकलना मुश्किल होगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट फ्रॉम देयर एंड वी वॉन्ट टू यू जज अबाउट यूर सेल्फ।
1: ही
0: सेड नथिंग डूइंग एंड मेरे ऊपर कोई मेहरबानी मत करना भी, जहां मेरी पोस्टिंग आती है मेरे को जाने दीजिए।
1: अच्छा,
0: ही ज्वाइन 7 जाट एंड 7 जाट के अंदर गया
1: जी,
0: तो ही वॉज पोस्टेड इन महेंडर सेक्टर एंड नाउ कमिंग टू द ऑपरेशन। ही वॉज सच ए जॉली फेलो एंड फुल ऑफ जोश ऑफ द टाइम, ही कंडक्टेड 3 ऑपरेशन विच यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, और 3 ऑपरेशन के अंदर उसने 5 मार दिए थे। इसमें एक इंसिडेंट और बताऊंगा, एक डी के शाह उसी कोर्समेट, ही वॉज ऑल्सो विद द 7 जाट एंड देयर इज ए घातक प्लाटून
1: जी जी।
0: तो दिस बॉय उमंग वॉज डूइंग घातक प्लाटून कमांडर फॉर 1 ईयर एंड ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन ही हैज किल्ड 15 टेररिस्ट
1: जी
0: एंड दीज 4 ऑफिसर दोज वॉज जॉइंट टूगेदर 7 जाट दे हैड टेकन ए सॉर्ट ऑफ प्लेज दैट जब तक हमारी पलटन यहां है और हम यहां पर हैं कोई टेररिस्ट हमारे एरिया से
1: जिंदा नहीं जा सकेगा
0: अंदर घुस नहीं सकेगा
1: एंड
0: दैट ही डिड। कैप्टन डी के झा सेक्रीफाइस्ड अबाउट 2.5 मंथ्स अर्लियर देन दैट इन दैट सेम एरिया एंड उमंग वॉज डूइंग एडजुटेंट। उमंग टोल्ड मी इन द नाइट अराउंड मिड नाइट, ही टोल्ड मी दैट डैड डी के इज नो मोर। आई से व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, बोलते हुए तो छोड़ो मेरे से ऊपर क्या गुजर रही है, बट उसके ब्रदर है दिल्ली के अंदर एंड हिज बॉडी विल बी कमिंग टू एयरपोर्ट एंड उसके ब्रदर को आपके उसके साथ भेजना पड़ना एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 आई विल कॉल यू एंड गिव मी रिपोर्ट। दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर फॉर माई यंगर सन एंड द ब्रेव बॉय एंड नेक्स्ट आई डिड ऑल द थिंग्स बिकॉज ही टोल्ड मी कि उसके पास पैसा नहीं होगा, उसकी टिकट वगैरह कर दीजिए और डेड बॉडी के साथ वो उधर से लेके जाएंगे उसे। सो दैट वॉज डन। देन उमंग का जो बताया ऑपरेशन, ही वॉज डूइंग एडजुटेंट फॉर 2 ईयर्स, ही वॉज पोस्टेड आउट, पोस्टिंग आ चुका था, ही केम ऑन 10 डेज लीव एंड 10 डेज लीव के वापस जब वापस गया सो ही रीच देयर ऑन द 17th evening
1: जी,
0: रादर 18th evening
1: जी,
0: 18th और 19th 18th evening ही रीच देयर
1: जी
0: एंड ही वॉज देयर टू हैव हिज फेयरवेल पार्टीज एंड ऑल दैट एंड पिक अप अ ट्रॉफी एंड गेट आउट फ्रॉम द बटालियन डूइंग गुड जॉब। दैट टाइम

0: was some information on news and all that, that there are some terrorists, those who are crossing the border. So he went to the CO and requested him that I want to go for the operation. So CO told him, no, you send somebody, you will not go. You are already posted out and you have to go. That is enough for you. So this boy insisted on him, and the third time he got ready, took some people with him and went for the operation himself. Then CO warned him that go up to so-and-so location and conduct the operation. Take care. Apna dhyan rakho. But this boy, full of Josh, and when he went with the ambush party as the ambush commander, he put the ambush over there and allowed the six terrorists to get into the ambush, and then he opened the fire. First terrorist was killed by his fire, then other people, personal engaged the ambush terrorist. One terrorist was running back towards the dhara, one of the dhara is the Yunokhanda type of makan, jinme dangar unger baanthe hai, to usme wo shelter lene ke liye bhaag raha tha. Umang ran parallel to him and shot at him also. Umang also got a shot from side from this fellow or any terrorist, those who are still alive.
1: Aamne saamne ki ladai thi us terrorist ke saath.
0: From 6 meter itself.
1: Achha.
0: Each other shouted at each other and he said, kafir and all that. He said, bloody fool, I'll kill you. And he shot him down over there. And he told his operator, ke, Ramkishan apne CEO sahab ko bolo, maine apna kaam pura kar diya hai, jawanon ko fire jari rakhe, koi bach ke nahi jana chahiye, aur mere shayad kahin lag gayi hai. So by that time the operator approached him, Umang was no more.
1: Achha. So, to us moment par Umang Bharadwaj ne shahadat pai us operation ke dauran.
0: Ji.
1: 6 terrorist जो मारे गए,
0: जिस टाइम 15 पहले मार चुके थे, 6 ही मारे, 21 टेररिस्ट.
1: जी तो आज हम शौर्य चक्र से सम्मानित मरणोपरांत कैप्टन उमंग भारद्वाज को याद करते हैं, उनकी बहादुरी, उनकी वीरता, उनके शौर्य के लिए, अदम्य साहस के लिए. सर हम यहां पर, समय बहुत कम बचा है, मैं चाहूंगा कि जो मैसेजेस हमारे पास बहुत समय से आ गए थे उनको मैं आपको पढ़ करके बताऊं.
0: जी.
1: गुड आफ्टरनून का मैसेज है हितेंद्र दास का असम से आपके लिए, और उसके बाद ये मैसेज है, गुड आफ्टरनून टू कर्नल रेस्पेक्टेड सर एंड आरजे सर, आई एम राइटिंग फ्यू वर्ड्स टू आवर इंडियन आर्मी. आई बो माई हेड विद इमेंस रेस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर आवर बिलव्ड इंडियन आर्मी. You protected our borders with unwavering courage. You served the nation with selfless dedication, and you inspired every Indian with your sacrifices. Because of you, we live in freedom and peace. So entire nation is forever indebted to you, Indian Army. Jai Hind, Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai. Yeh hai sir Shankar Lodh from Kakrola, Dwarka, Sector 15, Delhi se.
0: Thank you very much.
1: Aur आर्मी ऑफिसर को और आरजे सर को नमस्कार. जय हिंद, जय भारत. यशवंत आडमुटे धाराशिव हैं सर, ये महाराष्ट्र से, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार. भारद्वाज साहब से मिलने में बहुत खुशी है जी. वेलकम टू द शो. श्रीकांत हैं सर, ये टोलगेट त्रिची तमिलनाडु से.
0: वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम, थैंक यू वेरी मच.
1: चरण कुमार हैं सर, ये सन ऑफ श्री ब्रिजेश कुमार, विलेज बरकतपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, स्टेट यूपी से. और कर्नल भारद्वाज जी को मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत ये कह रहे हैं आपको सर.
0: हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत सबको, हमारे साथियों को, सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक.
1: जी. और सर हैं ये शांतचारा बादीगर कोकानूर हरिहार से, देवनागरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका. रिस्पेक्टेड सर, संदेश टू सोल्जर्स इज अ वेरी मीनिंगफुल एंड हार्ट टचिंग प्रोग्राम. यू प्रेजेंट ब्यूटिफुली, रिमाइंडिंग अस ऑफ द सैक्रिफाइसेस, सर्विसेस, करेज एंड पैट्रियोटिज्म ऑफ ब्रेव सोल्जर्स who protect our nation day and night at the borders. Soldiers stay away from their families and perform their duties for the safety and security of our countrymen. Their dedication and selfless services are truly commendable, sir. Ye keh rahe hain. Heartfelt thanks to you for bringing such a meaningful program to us. Thank you so much. Aapne hamein suna aur aapne hamein message kiya. Aur hain sir ye Colonel Kamal कर्नल कमर भारद्वाज जी, जय हिंद। 71 आमने सामने के वार का विवरण।

0: शंकर मन उत्साह से भर गया है। कमर जी का आज भी वही जज्बा महसूस हो रहा है सर, आपकी बात सुनकर के ही कह रहे हैं
1: थैंक यू सो मच।
0: जी। और नाम शुभ संध्या, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, शायद राजेश भल्ला एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से हैं ये, और ये है मैसेज। नमस्कार, मेरठ से वीरू बख्शी, आपके टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी मेहनत करी आपने, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना। जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। और भी सर बहुत सारे मैसेजेस हैं और समय बहुत कम हमारे पास बचा है
1: अभी
0: ये
1: अभी कुछ एक बार पूछ लो और ना।
0: जी सर। अब हम मैसेजेस बहुत सारे, मैं सब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय है बहुत कम हमारे पास। मैं सर बस चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपकी और आपके जो फैमिली है उसका किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, अब आप किन चीजों में इन्वॉल्व हैं सर रिटायरमेंट के बाद।
1: इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद में हमने एक स्कूल खोला था
0: जी
1: बाय द नेम ऑफ कर्नल पब्लिक स्कूल,
0: कर्नल
1: माना
0: पब्लिक
1: हुआ
0: स्कूल
1: पब्लिक स्कूल है,
0: जी
1: सीबीएसई 10+2।
0: जी
1: एंड आवर वॉलीबॉल टीम हैव बीन अंडर 19, अंडर 17,
0: जी
1: नॉट ओनली नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन।
0: जी
1: एंड आई हैड ए हॉस्टल ऑल्सो इन द स्कूल इटसेल्फ फॉर द
0: जी
1: बॉयज।
0: जी आज सब आप सोशल सर्विसेज में भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, और आप जो लोग होते हैं जिनको मदद चाहिए सोशल सर्विसेज में, आप भी और आपका परिवार भी इसमें पूरे
1: सोशल
0: तरीके से
1: सर्विस
0: है
1: के उमंग के जाने के बाद में
0: जी
1: हमने अपना ध्यान लगाया सोशल सर्विस एंड अदर थिंग्स के अंदर, जिसके अंदर के
0: जी
1: वन रैंक वन पेंशन, ये
0: अच्छा
1: हमारा पूरा फाइट था। और
0: जी
1: आज हमारे पुराने फौजियों को, खास करके वार विडोज एंड विडोज को
0: जी
1: जो
0: जी
1: फायदा मिला है, और हम सबको वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: और सर उसमें आपने
1: दूसरा,
0: पूरी मेहनत की उसको
1: उसमें सारा जो प्रोटेस्ट था, बहुत आई वॉज लीडिंग वन एंड
0: जी,
1: ऑल द प्रोटेस्ट वॉज
0: और उसमें
1: कैरिड
0: सर कामयाबी
1: मी माई
0: मिली
1: वाइफ
0: जी
1: एंड मिस जाखड़ इज वाइफ।
0: जी
1: एंड दूसरा, एक मैंने बहुत बड़ा ये टोल का यहाँ पे होता था बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव,
0: अच्छा
1: एमबीएस मॉल के पास में,
0: जी जी
1: जहाँ दो दो ढाई ढाई घंटे ट्रैफिक
0: ट्रैफिक रहा
1: जैम
0: था,
1: होता
0: जाम
1: था,
0: होता था
1: और इवन एम्बुलेंस और प्रेग्नेंट वुमेन वर
0: जी
1: नॉट एबल टू गेट थ्रू। एंड इन दैट वी आई वॉज एबल टू गेट इट रिमूव्ड
0: जी
1: परमानेंटली फ्रॉम दैट
0: आपने ये
1: प्लेस,
0: सब काम किए और
1: बिकॉज ऑफ
0: अब भी आप लगे रहते हैं कुछ ना कुछ कर
1: बिकॉज
0: रहे
1: ऑफ
0: हैं
1: मोटिवेशन ऑफ उमंग एंड माई
0: बिल्कुल
1: सेल्फ इज फुली आई बीन इन्वॉल्व इन ऑल दी थिंग एंड
0: बिल्कुल सर
1: डिवोटेड टू व्हाट्स एवर मैक्सिमम आई कैन डू, आई मस्ट डू टिल आई एम एबल टू डू समथिंग।
0: बिल्कुल सर, बहुत ही जोश भरी आपसे हमने बातें की आज, और हमने याद भी किया कैप्टन उमंग भारद्वाज को भी, जिनको शौर्य चक्र से नवाजा गया मरणोपरांत उनकी बहादुरी के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए, कर्नल कमर भारद्वाज सेना मेडल सम्मानित 1971 वॉर वेटरन। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो
1: आपका
0: में
1: भी
0: शामिल
1: बहुत
0: होने
1: बहुत
0: के लिए।
1: धन्यवाद, आपको और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।
0: भारत माता की जय, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, आपने हमें अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे। और 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो पर प्रोग्राम जारी रहेंगे, आगे है सेटेलाइट्स, मीना के साथ शायद को दें इजाजत।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: இதுவரை சந்தேஷ் டு சோல்ஜர்ஸ் டெல்லி அஞ்சல் கேட்டோம். நேரம் 5 மணி, இனி தொடர்வது செய்தி சுருக்கம்.
4: வணக்கம். செய்தி சுருக்கம் வாசிப்பவர் வடிவழகி கபிலன். அறிவியல் ஆராய்ச்சியின் மூலம் ஆயுர்வேத சிகிச்சை முறை வலுப்படுத்தப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை குடியரசு துணைத் தலைவர் திரு சி பி ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார். நாடு முழுவதும் இதுவரை 8526 நக்சலைட்டுகள் சரணடைந்துள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா கூறியுள்ளார். வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா என்ற இலக்கை எட்ட இளைஞர்கள் பங்காற்ற வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். மாலத்தீவு கடலோர காவல்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 25 தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்கவும் அவர்களின் 3 மீன்பிடி விசைப்படகுகளை மீட்கவும் வெளியுறவு அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் திரு விஜய் கடிதம் எழுதியுள்ளார். தமிழகத்தில் கூட்டுறவு அங்காடிகளில் குறைந்த விலையில் 100,000 மெட்ரிக் டன் அரிசி படிப்படியாக விற்பனை செய்யப்படும் என்று மாநில உணவு அமைச்சர் திரு வெங்கடரமணன் கூறியுள்ளார். தமிழகத்தில் பால் கொள்முதல் தற்போது 1,90,000 லிட்டராக உயர்ந்துள்ளது என்று மாநில பால்வளத்துறை அமைச்சர் திருமதி விஜயலட்சுமி தெரிவித்துள்ளார். முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் APJ அப்துல் கலாமின் பிறந்த தினத்தையொட்டி ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பேய்கரிம்பில் உள்ள அன்னாரது நினைவிடத்தில் மாநில அமைச்சர் திரு மதன் ராஜா மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார். மின்வெட்டு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணவும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தவும் தாவேக அரசு தவறிவிட்டதாக திமுக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. மத்திய அரசின் மானியத்துடன் செயல்படுத்தப்படும் சூரிய மின்சக்தி திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு கண்காட்சி

0: சென்னை சில்ஸ், லெட் தி செலிப்ரேஷன்ஸ் பிகின்.
1: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: இன்வெஸ்டர் விழிப்புணர்வு முயற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சார்த்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: பாடல் வந்து கேட்டு இணைந்திருங்கள்.